0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
3: Jo azadi to itna mushkil aapne kiya ke matlab koi aapko aap pe hi camera hai aur aap hi sab kuch kar rahe hain, warna to ye hota hai na ki baat रिप्लाई हो रही है तो आप जवाब दे रहे हैं तो वो एक अलग होता है, लेकिन सिर्फ आप पर ही रख के पूरे एक्सप्रेशन लाना, और आप मतलब आप डायरेक्ट भी कर रहे थे उनको कि इस तरह से करना है, क्योंकि ये वाकई बड़ी नेचुरल चीज है कि आप खाते हुए तो रुकते थोड़ी हैं।
1: लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए होता ना, वो बेसिकली जब आप खाते हैं तो टक टुक की आवाज भी आती है, चीजें भी आती है, तो वो उसको सिंपल करना चाह रहे थे। तो कई लोग जो होते हैं ना, वो सिंपलिस्टिक तरीके से सीन्स लेते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। आपको जो डायरेक्टर बोलता है आपने वो करना होता है। तो पूरी फिल्म में मुझे सिर्फ डायरेक्टर ने दो दफा इंस्ट्रक्शंस दी, उसके अलावा फर्स्ट टेक सेकंड टेक में सारा कुछ हो जाता था। उन्होंने बड़ी तारीफ करते थे, बड़ा प्यार करते थे, और कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ, इसको दोबारा कर दें, बल्कि मैं खुद कहता था एक दफा और कर लें।
3: नहीं, वो रोल तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि अंगूठी में नगीने की तरह, क्योंकि आप थे हैं भी माशाल्लाह से पठान, और आपका जो एक कैरेक्टर था वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, बल्कि आप उनको गाइड कर रहे थे कि इस तरह नहीं, ये चीज इस तरह।
1: उर्दू के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसकी बहुत सारी जो उर्दू उसमें बोली गई है वो मैंने लिखी है, क्योंकि जो पहले उर्दू लिखवाई गई थी वो यहाँ की बॉर्न रेज लेडी से लिखवाई गई थी, तो फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, आप जनाब और इस तरह की बातें नहीं होती उसके अंदर, तो आपने उसको बहुत लाइट सा रखना होता है, जैसे घरेलू तरीके में बातचीत होती है। आपने देखा होगा जब भी ये पाकिस्तानी फिल्म्स बनाते हैं, या पाकिस्तानी फिल्म हॉलीवुड में भी बनती हैं या इंडिया में भी बनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की उर्दू और जनाब बोलना शुरू कर देते हैं। जनाब वहाँ कोई भी नहीं बोलता, वो सिर्फ मजाक के लिए कहते हैं। सो एग्जैक्टली बहुत, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हमने की, फिर उसके बाद मैंने और पूर्वी ने बहुत सारी चेंजेस भी की उसके अंदर लाइनों में और चीज़ों में, तो बहुत। फिर वहाँ पे एक उर्दू के एक टीचर भी थे, वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए थे, उनसे भी कंसल्ट किया गया था, और फिर उनको मैंने ही कहा था कि ये जो लेडी तलाक दे रही हैं ये सीन नहीं हो सकता, ये इस्लाम में जायज़ नहीं, और ना ही इसको कोई मानेगा, लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं, वो बीबी से तलाक दिलवानी है तीन, वो उसके ऊपर बड़ा उनको उनसे उन्होंने भी कहा कि ये एक मसला खड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये है ही नहीं ना रिलीजन के अंदर, है ही खुला ले सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती, लेकिन वो एडमेंट थे, वो यहीं की बॉर्न एंड रेज, उन्होंने कहा नहीं हम दिला के छोड़ेंगे। हमने कहा दिला दें फिर सड़क ही फिल्म में, तो डायरेक्टर ने और राइटर ने करने ना, वो तो उनका काम है, आप तो सिर्फ
3: सही बात है।
1: आप तो सिर्फ बात बता सकते हैं। और फिर और भी दो चीजें थी जो मैंने फिल्म के अंदर, मुझे उसमें जो फ्लॉज नजर आए थे मैंने उनसे जरूर बात की थी उसके बारे में, कि हमारा काम है जब आपको कोई झोल नजर आए किसी चीज में, तो बेचारे थोड़े से घबराते भी थे। फिर जब मैंने गाना उसमें शुरू किया, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो आगे से मुझसे डायरेक्टर आई, मुझसे पूछती आप सिंगर भी हैं, मैंने कहा नहीं आज से पहले तो नहीं था, तो मैंने कहा जी मैं तो एक्टर भी नहीं था पहले, तो मैं तो रेडियो का बंदा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी, उन्होंने फारसी में मुझसे कुछ पूछा, फिर अरेबिक में कुछ बातें हुई, फिर जेरिलिन को मैंने वो रिकॉर्ड करके दी, वो जो आखिर में नमाज रिकॉर्ड करके दी ताकि वो जो आखिर में पढ़ती है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सीन थोड़े से चेंज भी किए गए हैं, पहले पहला सीन जो हमारा था वो अफतारी के ऊपर था, तो उसमें मैंने हाँ जी इफ्तारी की दुआ जो है वो मैं रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं, तो वो था जो बदल दिया गया सीन। इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस की गई हैं फिल्म के अंदर, तो आपको जो मिला है इंशाल्लाह किसी दिन अगर हमें डिलीटेड सीन मिले तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एक्टिंग हुई हुई है जो काट दी
3: माशाल्लाह से। आप इस मामले में भी बहुत लकी रहे आजाद जी, लकी रही है क्या कि आपने जो सॉरी भाई का प्ले किया था उसमें जो नुमान एजाज साहब, इतने सालों एक्सपीरियंस, इतने एक्सपीरियंस, एंड दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज प्ले जो आपने एक्ट किया था।
1: नहीं, मैं उससे पहले उसमें गिलानी जो कि उनसे भी सीनियर हैं, तो किया क्या हमने तीन काम किए, और वो तीन काम इतने सीनियर और इतने कमाल लोगों के साथ किए जो कि लेजेंड्स हैं अपने अपने, तो उनके साथ काम करने से जो एक्सपीरियंस आपका 10 15 20 साल में होना था ना, वो तीन चार एक्सपीरियंसेस में ही हो गया। तो ये बड़ा फायदा होता है, आप जब भी काम करें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा हो ना उसके साथ आपको काम करना चाहिए, ताकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग हो सकती है आपकी जो वैसे नहीं हो सकती।
3: जी
1: ठीक है,
3: बिल्कुल
1: खुश
3: बिल्कुल
1: रहिए,
3: सर।
1: हमारे साथ रहिए, मेहरबान कदरदान, और भी लोग हैं हमारे साथ। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो, और उससे हमें हाला याद आ गई बड़े दिनों के बाद। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
4: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
4: बिल्कुल मजे में। अभी
1: बोर तो नहीं किया हमने और अर्शन जी ने आपको? हम दोनों ने मिलके बोर तो नहीं किया आपको?
4: नहीं, मैं सुन रही थी।
1: जी
4: तो मैं ये कहूंगी कि जो आप लोगों ने रेडियो शो शुरू किए, वो मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ और मैं अपनी बुक्स भी घंटों सुन सकती हूँ। तो मुझे आई एम अ लिसनर ज्यादा, तो मुझे मजा ये आता है कि अच्छा कंटेंट और अच्छा बोलने वाला हो या अच्छी बुक हो तो मतलब यू एंजॉय। लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोग चले गए हैं उस पे विजुअल पे, ये बताएं कि करते वक्त मैं ये कहूँगी एनर्जी डिवाइड हो जाती है।
1: हाँ जी,
4: विजुअल में और ऑडिटरी में और दूसरी चीजों में भी
1: बहुत मुश्किल।
4: डू यू थिंक कि यू जस्टिफाई विद ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम, और कुछ चीजें विजुअल खा जाती हैं? जो आप हमसे बातें करते थे शुरू के प्रोग्राम्स में, तो वो बिल्कुल ही फोकस होता था कि हम सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं।
1: जी
4: अभी इस वक्त जो है, आप लोगों के कई महल हैं कि वहाँ पे आपको देखना है कमरा साफ है, लाइट सही है, साउंड सिस्टम तो चलो उसके साथ है, लेकिन द अटेंशन इज डिवाइडेड देयर। दूसरा ये बताएं कि इंसानी नेचर में हमारी जिंदगी खुद ड्रामा है, एक तरह से देखा जाए इट्स ऑन गोइंग ड्रामा फॉर 1800-1900 ईयर्स। इसके बावजूद हम सब दूसरे ड्रामे देखने और उसका मजा लेने या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट कीड़ा?
1: ये सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन पहले कर दूं। क्वेश्चन आपका ये कि हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में, तो फिर हम दूसरे जो ड्रामे हैं, जो टीवी के ड्रामे हैं, जो बाकी दुनिया के जो ड्रामे हो रहे हैं, उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है वो, और ये कीड़ा क्यों है कि हमें हर एक की ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी के जो ड्रामे इतने शौक से हम देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग का काम है ना, अगर आप पीछे जाएँ इंसान के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो अगर आप किताब खोलते हैं रब की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रब ने आपको बहुत सारी कहानियाँ हमसे हज़ारों साल पहले की जो कौमें थी उनकी भी कहानियाँ सुनाई और उनके बारे में हमें बताया, क्योंकि 3-4-5-10 हज़ार साल पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास कि इस तरह हमें डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती। जैसे ज़ुल्करनैन के ज़माने के बारे में बात की गई है, इस तरह और बहुत सारी बातें की गई हैं। तो इंसान कहानियों में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर रब ने एक बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ एक इंक्विजिटिवनेस रखी है। इंक्विजिटिव होने की वजह से उसके अंदर एक इनबॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरियोसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब उस क्यूरियोसिटी के वो इसलिए है कि हम अपने बारे में खोजें, अपने बारे में जानें, दुनिया के बारे में जानें। तारीख को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हम कोई नतीजा अख़ज़ करें, उससे हम लेसन लर्न के साथ आगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर सकें, बार बार वो गलतियां ना करें। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी कहानियों से इबरत भी हासिल कर सकते हैं, सबक भी हासिल कर सकते हैं, और अपनी डगर भी हम जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि अपना रास्ता जो है वो किस तरफ होगा। इसलिए इंसान को इनक्विजिटिवनेस जो है वो उसकी ज़ात के अंदर क्यूरियोसिटी डाली गई है। हमने क्या किया, हमने क्योंकि हर चीज़ को हम नीच तरीके से सोचते हैं, जैसे हम रब जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे जहन की जो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमारी सोच नीच है, तो हमने किया कि रब के कॉन्सेप्ट को नीच बना दिया कि रब सिर्फ मेरा है, या मेरे मसलक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, या मेरी सोच से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, बाकियों का नहीं है, और मैं ही जो हूँ वो आला वर्फा हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा। तो ये हमने ये इस तरह की सोच से रब अनलिमिटेड को और लिमिटलेस को लिमिटेड कर दिया ताकि हम उसका अहाता कर सकें। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ड्रामे जो ज़िंदगी में है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमें जब एक्टिंग स्कूल में थे, हम मेथड एक्टिंग जब हम सीखने गए हॉलीवुड में, तो उन्होंने पहली 2-4 क्लासेस में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ड्रामा ना हो, वो स्क्रीन पर ड्रामा करें। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में ड्रामा होगा और बहुत ड्रामे होंगे तो फिर वो एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो एक्टर की लाइफ में ड्रामा कम से कम होना चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए या अन इवेंटफुल भी हो सकती है, लेकिन वो जो स्क्रीन के ऊपर जो उसने ड्रामा करना है उसकी जो प्रेपरेशन या उसका जो फोकस है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही चीज़ को बार बार देखने से आप बार बार एक ही चीज़ सीखेंगे और वो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है। तो जो आपको जो क्वेश्चन है, दूसरों की लाइफ में तब आपको इंटरेस्ट होता है जब आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप कितना बैक व्यू मिरर में देखते हैं? कम से कम जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप साइड चेंज करने लगते हैं, जब छोटी मोटी कोई चीज़ होती है या पीछे का ट्रैफिक आपको किसी कभी कभी कभी आप बैक व्यू मिरर में देखते हैं। ज़्यादातर आप आगे देख के गाड़ी चलाते हैं या राइट लेफ़्ट में भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब, वरना आप सीधा आगे की तरफ। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को, पास्ट में चीज़ों को तब देखते हैं कि आपने क्या सीखा था, क्या समझा था। राइट लेफ़्ट आप तब देखते हैं जब आप अपनी अलाइनमेंट सीधी कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं कि आगे जो ट्रैफिक है मुझे उसके हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या रखनी चाहिए और मुझे किधर गाड़ी को लेके जाना है और किधर नहीं लेके जाना। जैसे ही आगे के ट्रक या बड़ी चीज़ आती है आप हमेशा उसके राइट या लेफ़्ट जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज इंसान का जहन जो है वो देखना चाहता है आगे क्या है, क्योंकि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डायरेक्शन गुम हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं मैं। कभी शावर लेते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा आपको टोटली नॉर्थ जो है वो और है, आपका मुंह ही किसी और तरफ होगा। दो मिनट में आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आँखें बंद करते ही आपकी डायरेक्शन जो है वो गुम जाती है। ठीक है, जैसे पानी कान में पड़ जाए तो क्या होता है, तब भी आपका जो है बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, बंदा गिरने लगता है, चक्कर आने लगते हैं बंदे को। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। तो ड्रामा जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में है या इर्द गिर्द हो रहा है उससे आपने सीख लिया, फिर आगे बढ़ गए। बार बार एक ही ड्रामा देखना और एक ही तरह के काम करते रहने से फिर आप कुछ नहीं सीखते, बल आप उस ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो ड्रामे का जो ना ड्रॉप सीन जो है वो आप खुद ही हो जाते हैं।
4: बिल्कुल,
1: तो ये
4: बिल्कुल।
1: एक पॉइंट था वो ड्रामे वाला। उससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सवाल आपका ये था कि आपने कहा कि जब आप रेडियो पे शो करते थे तो सिर्फ आवाज़ से आप तमाम चीज़ें करते थे और आपका फोकस जो था ना सिर्फ आवाज़ के ऊपर और अपना मैसेज देने के ऊपर होता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअल भी हो गया, डिजिटल मीडिया भी हो गया, तो इसमें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी। तो इसका जवाब है बाकी लोगों के लिए तो हुई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है जी, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट होता हूँ ना तो फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ और मैं इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सोचना चाहता, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पे लाइट्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन जब एक आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे वो कैमरा स्क्रीन के मैं मिडिल में बैठा हूँ या नहीं बैठा, लाइट्स प्रॉपर लग रही हैं या नहीं, और ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा लगूँ। इस बात को भी गौर से सुनिएगा। कैमरे के आगे जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताने की ये जसारत कर रहा हूँ कि कैमरा है क्या चीज़ और वो क्यों हर बंदा कहता है कि जी वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, वो एक तस्वीर जो है वो आपकी बहुत सारी बातें जो आप शायद हज़ार अल्फाज यूज़ करके बताएं वो आपकी एक तस्वीर दे सकती है। बिल्कुल इसी तरह कैमरा जो है ना, वो तस्वीर तो छोटी चीज़ है, कैमरा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप जब आंख नहीं मिला पाते या जब आप ऑथेंटिक नहीं होते या जब आप फिल्म में आपने देखा होगा जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते तो वो और छोटी से छोटी चीज़ कैमरा पकड़ लेता है। ठीक है जी, तो इसलिए जब आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा बंदा जो आपको देख रहा है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बैलेंस में रखना है। अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो आपको स्क्रीन में दरमियान में होना चाहिए, माइक आपके सामने होना चाहिए, लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गलत, अगर कोई शेडो भी आएगा तो बार बार बंदे का वहाँ पे जहन जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ चमक रही है माथे, जो कि पसीना कभी कभी आ जाता है, उसको भी डैब करके हटाना पड़ता है, वरना अगर कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो काम की बात सुनते सुनते अगर उनका जहन जो है वो आपकी माथे की चमक पर गया तो वो बार बार उसी को देखते रहेंगे। वो जो माइक पेंस नहीं था उसको मक्खी बैठ गई थी तो हर बंदे ने सारी उस कोई बात किसी ने नहीं सुनी, बस मक्खी के ऊपर सारा तबसरा था। इसी तरह जो आपके बाल हैं, जो आपकी शक्ल इस वक्त लग रही है, जैसे आपने कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, ये सब चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट कोई पुट अक्रॉस करना चाहते हैं या कोई रीज़न एंड लॉजिक देना चाहते हैं किसी इंसान को कि वो उसको गौर से सुने, आप कैसे लग रहे हैं कि बजाय वो जो बात की गई है वो उसके दिल को पकड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको पता है स्क्रीन का अटेंशन स्पैन कितना है, यूट्यूब का आपको पता है जो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो 3 सेकंड के बाद काउंट होता है, यानी कि लोग 3 सेकंड से पहले ही स्किप कर देते हैं। اتنا امپورٹنٹ ہے اسکرین کے اوپر جب آپ آئیں تو آپ کی آواز، آپ کا انداز اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو پہلے 4-5 سیکنڈ میں جو آپ کہتے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، ورنہ اسکپ کر دیے جائیں گے آپ۔ تو بالکل اسی لیے کیمرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے سامنے کام کرنا اور اس کے تمام لوازمات پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے ابھی ہم نے فرسٹ اسٹیپ میں صرف ویب کیم سے ہم نے کوشش کی آپ لوگوں تک چیزیں پہنچانے کی، بیک گراؤنڈ، یو نو، بہت ساری اور چیزیں۔ جیسے جیسے ہم چیزوں کو جانتے جا رہے ہیں، کیونکہ پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے تھے شروع میں بھی، جتنے لوگ بھی اوورسیز پاکستانی، انڈینز اور یو نو بنگلہ دیشی یہاں پہ آتے ہیں، وہ سب بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی شیف نہیں ہوتا ریسٹورانٹس کے اندر۔ سب لوگ جہاں پہ آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے نان لگانے کے بڑے پیسے ملتے ہیں، 3-4 ہزار ڈالر، تو پھر وہ نان بائی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو انگلش میں سو شیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح وہ یہی کام کرتا ہے ایکچولی۔ لیکن باقی جتنے بھی لوگ اس وقت ریسٹورینٹس میں کھانا پکا رہے ہیں سب نے یوٹیوب سے سیکھا ہوا ہے، اس میں سے کوئی پکا مثالچی جو ہے نا پچھلے جو زمانے کا کھانا پکانے والا جو ہے نا وہ بہت کم ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح سوچ کے آپ نے یہ بات کو آگے لے کے چلنا ہے کہ لوگ دے کیپ لرننگ along the way، آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزوں کو امپروو کرتے ہیں، اور پھر اور کبھی کبھی ہم جب لوگوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سالوں لگ جاتے ہیں، ہمیں کام کا بندہ نہیں ملتا، اور پھر مسلسل کوشش کرنے کے بعد جب آپ کو بندے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو کام 2-3 دن میں ہو سکتا تھا اس کے لیے ہمارے 2-3 سال لگ گئے، لیکن وہ پروسیس ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو آزاد پہ بھی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں، اور ابھی بھی ہم نے دنیا میں باہر نکلنے کی اس طرح کی کوشش نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بھی کچھ ریزنس تھے۔ لوگ جو ہے نا، یہ جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں یا ریڈیو آزاد پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو دنیا میں اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اور بہت کچھ بکتا ہے، اگر اس کی جگہ ہم ایک بلی رکھ لیتے اور بلی کو عجیب عجیب طریقے سے گدگداتے رہتے اور اس کی ویڈیو بناتے تو ملینز میں ویوز ملتے ہیں، اور جتنی آپ نکمی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں اتنے آپ کو دنیا میں زیادہ ویوز ملتے ہیں، کبھی اس کو لوگ انجوائے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ مینٹل کیلبر بھی ہمارا اتنا ہی ہے اور اتنی ہے ہماری عقل اور سمجھ بوجھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب آپ حیوانی حالت میں اور ایک دھکا انرشیا کے سٹیج میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو کام کی، عقل کی، سمجھ کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو، یہ باتیں آپ کو لگتی ہیں جب 30-32-35-40 سال آپ کی عمر ہو جاتی ہے نا، اور جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے بارے میں سوچا تھا، جو کچھ دنیا کے بارے میں سوچا تھا، اور جو کچھ آپ نے رب کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں سوچا تھا، وہ ویسا تھا ہی نہیں، وہ کہانی کچھ اور ہے، اب پھر سے زندگی شروع کرنی پڑے گی۔ اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں، اس کو بہت سارے لوگ اس وقت تک بٹر ہو چکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ریئیکشنری ایک لائف جیتے ہیں، وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں۔ آج کا کلپ بڑا اچھا تھا، پروسیس آف ان لرننگ، کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے زندگی کے ساتھ ساتھ نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ لرننگ پہ بڑا زور دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لرن کرنا بھی چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم بچے تھے تب سے لے کے جوانی تک اور مڈل ایج تک ہم نے بہت ساری ایسی باتیں راستے میں پک کر لی ہیں جو کہ ہمارے لیے ہانیکارک ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہمارے لیے انجوریس ٹو ہیلتھ ہے، مضر صحت ہے ہمارے لیے، ذہنی صحت کے لیے بھی، جسمانی صحت کے لیے بھی، رشتوں کی صحت کے لیے بھی، اور زندگی میں جو ہمارا مقصد ہے اس کی صحت کے لیے بھی۔ تو ان کو آپ نے ان لرن بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ انسانوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کی زندگی بے انتہا مشکل ہو جائے گی۔ وہ شوہر جو بیوی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اس کی زندگی عذاب میں ہے، وہ بیوی جو شک کرتی ہے اپنے شوہر پہ وہ ہر وقت تکلیف میں، اس نے خود اپنے آپ کو آگ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ اپنے پارٹنرز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جو لوگ جن سے اپنے بزنس جو وینڈرز ہیں آپ کے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جو ایڈورٹائزرز ہیں آپ ان کے یا وہ آپ کے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ سارے کا سارا کام ٹرسٹ پہ کھڑا ہے۔ رب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سب ایک بلیف سسٹم کے اوپر کھڑا ہے۔ اسی لیے ٹرسٹ بہت ضروری ہے، انسانوں کے اوپر اعتماد کرنا، آنکھ کھلی رکھنا، چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کب تک آپ ہر وقت، انا نہیں تھا جو 24 گھنٹے چکنا رہتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کرتا رہتا تھا، ایگزاسٹ ہو جائیں گے، کورٹیزول باڈی میں اتنا سکریشن اس کی ہوتی ہے بندے کو سمجھ نہیں آتا، بندہ پھاما ہو جاتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ کچھ۔ اور میں جتنے لوگوں کی زندگی دیکھتا ہوں اتنی انسرٹنٹی میں مر رہے ہیں، وہ کسی پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی پہ بھی۔ اور یقین کریں मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जिन लोगों को भी देखा है ना, वो किसी पे भरोसा नहीं करते। मैं उन पे कभी भरोसा नहीं करता, कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं वो उनकी अपना जहन है, और मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में मार खाते देखा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रियली रियली स्टूपिड इन द एक्शंस दैट दे हैव टेकन इन देयर लाइफ। इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, हमारी चॉइसेस स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत रिफाइंड बीइंग है, लेकिन हमारी चॉइसेस चीख चीख कर हमें बता रही होती हैं कि हमारी चॉइसेस स्टूपिड है। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारी स्टूपिडिटी होती है, जिस एनवायरनमेंट को हम चुनते हैं किसी काम के लिए वो हमारी स्टूपिडिटी होती है। एक सेमो थोर वाली ज़मीन के अंदर आप बीज डाल देते हैं और आप फिर कुदरत के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई मेरा फसल नहीं लगी, मेरे साथ जुल्म हो गया, आपने प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे भी नहीं, सिर्फ अपने जहन पे ट्रस्ट करके वो चलना चाहते हैं, और उनका जहन कॉन्ड है पहले से, उन्होंने कुछ चीज़ें जो बचपन में उनके साथ हुई हैं उसको अपने साथ आज भी बांध रखा है। जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आप अच्छे दोस्त की डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, अच्छा दोस्त बनने की क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपको कभी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, डिज़र्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, और अगर आप नहीं डिज़र्व करेंगे ना तो मिली हुई चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपने दोस्तों के इसीलिए मैं ही अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ऐसा बंदा अपने आप को मिला हूँ जो दिल से ये कह सकता है कि मेरे जो 5-6 दोस्त हैं उससे बेहतर मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी, मैं रेडियो पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों को मिलके भी मैं उनको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या किया, वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। और मैं अक्सर जब लोग मुझे गिराने की, तोड़ने की, तकलीफ़ देने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं, चाहे फैमिली से करें, चाहे बाहर से करें, चाहे बिजनेस वाले लोग करें, या जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूँ, लोग ये पूरी कोशिश करते हैं, वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाते, एक वजह से सिर्फ, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त हैं वो मुझे कभी टूटने नहीं देते, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 40 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे मान जाऊँ आगे होगा, अगर होगा भी तो एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार, सब नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो रिश्ते हैं इसके ऊपर काम किया होता है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंसानों के ऊपर करना पड़ता है जो आप किसी पर नहीं करते। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो खुद ट्रस्ट के काबिल हैं? ये सवाल मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या आप किसी के ट्रस्ट के काबिल हैं? और जवाब अक्सर ना में होता है, क्योंकि जब जब मैंने उन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया, लेकिन उनके पास लॉजिक्स, रीजंस सारे पूरे होते हैं। क्योंकि जब आपके पास बहाने, आपने एक दफ़ा अपने जहन को, सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपने आप में बदल लेना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप जब गलती करते हैं ना तो उसके बहाने ना बनाएं, उसकी इलॉजिकल लॉजिक्स ना दें, उसकी जस्टिफिकेशंस ना दें, आप कभी नहीं सीखेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे। क्योंकि जिस जहन को बहाने सूझने लगे और उसने दे एंड ही कुड गेट अवे विद दोज बहानास, एक्सक्यूजेस, इलॉजिकल लॉजिक्स, वो कभी चीज़ नहीं सीखेगा। इस आदमी को नकल करने की आदत हो जाती है, बूटियाँ बनाने की आदत हो जाती है, किताब रख के पेपर देने की आदत हो जाती है, वो कभी इल्म नहीं हासिल करने की कोशिश करता, उसको पढ़ाई सूझती नहीं है, उसको सवाल याद ही नहीं होते। मैं जानता हूँ लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग इसी तरह बड़े हुए हैं, वो तब भी नकल मार रहे थे, वो आज भी नकलें मार रहे हैं दूसरे लोगों की, और कहीं नहीं पहुँचे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में फेल हो जाना वो बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको शर्म आ सकती है, आप गैरत पकड़ सकते हैं, आप जो है वो कुछ उठ कर सकते हैं, लेकिन अगर नकलें मार के आपको पास होने की आदत हो गई, आप अपनी दोस्ती में भी फेल होंगे, आप अपनी बेगम के सामने, शौहर के सामने भी फेल होंगे, आप अपनी औलाद के सामने भी फेल होंगे, आप अपने पार्टनर्स के सामने भी फेल होंगे, आप रब के सामने भी

0: बहुत छोटे थे हम, वो उस वक्त कोई रूमी की किताब पढ़ रहे थे कोई, या जो उनकी बुक्स होती थी। तो लोगों के दिलों से गुजरते हुए ही ये रास्ता बनता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर कहना भी चाहता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे यही बातें कहने के लिए मैं लोगों से नहीं मिलता।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: son gets death sentence. Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing. Inflation falls to 2.8%, but is expected to rise from here. Starmer to face Badenoch at first Prime Minister's questions since Labour's election losses. Supermarkets hit back over pressure to cap prices of milk, bread and eggs. UK loosens Russian oil sanctions as fuel prices rise. Arsenal fans and players celebrate title at Emirates at 5 a.m. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Amerikee sadar Donald Trump ka kehna hai ki Iran par 2 se 3 roz mein hamla kar sakte hain, usko ek bada dhajka dena hoga. अमेरिकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म और अमेरिकी फौज को वहां से हटाने की रेजोल्यूशन मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों के शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM.
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
3: Assalamu alaikum, my name is Usamuddin Ali, and you are listening to Inspire 105.1 FM.

हाँ, फातिहा के शुरू में भी कहा जा सकता था, इंसानियत अल्लाह की हम्द करो। इसको समझने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। आप में से किन के बच्चे हैं? ओके, जिनके बच्चे हैं, आपने अपने अपने बेटे से कहा, बेटा पानी ला दो, हुक्म दिया ना, पानी ला दो। अब उसके पास अब दो इख्तियार हैं, या तो वो लाएगा या तो वो लाएगा। जब आप आमतौर पे किसी को हुक्म देते हो तो बात क्या होती है कि अब उस पे डिपेंड करता है वो करे या ना करे, वो करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अगर हम्द का हुक्म दिया होता ना तो बात किस पे डिपेंड करती? हम पे, हम करेंगे तो होगी। अब हुक्म हमने ना माना तो क्या होगा? नहीं होगी, नहीं होगी तो इबादत तो नहीं होगी अगर हम अब नहीं बनेंगे वुदू। लेकिन हम करो ना करो होगी, उसका तुम तो अब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती वो चीज़। तो इसीलिए अहमदू और हमदन लिल्लाह भी उस दर्जे के नहीं है जिस दर्जे के अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, हम से आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई कोई नाम बताएं मुझे जो आपको बताओ। रहमान, अच्छा, और अल मलिक, अल खुदूस। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिल रहमान, गलत है? अल्हम्दुलिल मलिक, गलत है? अल्हम्दुलिल खालिक, अल्हम्दुलिल रहीम, अल्हम्दुलिल हकीम, अल्हम्दुलिल हादी, अल्हम्दुलिल मुतकब्बिर, अल्हम्दुलिल जब्बार, अल्हम्दुलिल वहाब, सब सही है ना? क्योंकि ये तमाम किसके नाम है? अल्लाह ताला ही के नाम है। लेकिन उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने एक नाम का इख्तियार किया हम के साथ, अल्हम्दुलिल रहमान नहीं कहा। यहां तक कि आप अल्लाह का लफ्ज निकाल भी दो ना तो अरबी के एतबार से बात फिर भी समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का लफ्ज मैंने निकाल दिया, बात फिर भी समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नाम का लफ्ज़ यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है, ये समझने की कोशिश करें। पहली बात, जब किसी से आपका तारुफ होता है ना, पहली बात क्या होती है? नाम। नाम बाद में आपके बारे में तफासील। पहली चीज, अल्लाह ताला ने अपने नाम का जिक्र किया है क्योंकि फातिहा कुरान में फातिहा अल्लाह ताला से खुद तारुफ है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं, और तारुफ में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है? नाम की। नाम की देखिए, अगर खाली रब कहा होता तो एक कन्फ्यूजन हो जाती। इस कन्फ्यूजन का जिक्र भी कुरान में है। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो जादूगर थे, जब उन्होंने अपनी लाठियों को, अपनी रस्सियों को खाए जाते देखा तो क्या किया उन्होंने? क्या किया था? सबको पता है, सजदा किया था ना। अच्छा, वो जब उन्होंने सजदा किया तो फिरौन जरा कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं आई बात, ये हो क्या रहा है। तो वो समझा शायद ये राउंड टू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अब खड़े होकर दोबारा मुकाबला करेंगे। अब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? अच्छा, क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? उन्होंने ही कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए। क्या कहा? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। अब फिरौन फिर भी कंफ्यूज, हाँ, मुझे पता है मुझ पर ईमान लाए हो, फिर भी, क्योंकि जब उसने रब्बुल आलमीन सुना तो वो किसके बारे में सोच रहा था? उसने तो रब का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होते देखा है? अपने लिए। तो उसने जब उनकी बात सुनी, खड़े होके वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, वो समझ रहा है उसकी बात हो रही है। तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, बाद में बात मजीद वाजे करनी पड़ी अगली आयत में, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून का रब, गधे। गधे का तर्जुमा में मैंने इजाफा किया है, लेकिन बात यही हो रही है। जब उसने रब्बिल आलमीन सुना तो उसको कन्फ्यूजन, क्योंकि नाम नहीं था। नाम नहीं, फातिहा में तारुफ है तो नाम जरूरी है। एक और बात इसके बारे में समझ लें, ये भी बड़ी बड़ी अहम बात है। अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छा टीचर है,

0: चीज की तारीफ कर रहा हूं, उसकी ड्राइविंग की, उसकी कुकिंग की, उसके खाने पकाने की, उसके घर साफ करने की, किस चीज की तारीफ कर रहा हूं, उसके पढ़ाने की। अगर मैं कोई बहुत अच्छी माँ है, मैं किस चीज की तारीफ कर रहा हूं, उसकी शॉपिंग की, उसकी बच्चों की तरबियत की तारीफ कर रहा हूं ना। अगर मैं अल्लाह ताला की तारीफ करूं खालिक के नाम से, अल्हम्दुलिल खालिक, मैंने किस चीज की तारीफ की है, क्या अजीम मखलूक है उसकी, आप क्या बनाता है। अगर मैं कहूं अल्हम्दुलिल हादी, क्या जबरदस्त हिदायत देता है, अल्हम्दुलिल हकीम, उसकी हिकमत की तारीफ कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल अलीम, उसके इल्म की तारीफ कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल वहाब, उसके तोहफे देने की तारीफ कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल राज़िक, उसके रिज़्क की तारीफ कर रहा हूं, रिज़्क देने की तारीफ कर रहा हूं। कोई ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिसमें उन तमाम बातों की तारीफ हो जाए जो मेरे जहन में है, और वो तमाम बातें जो मेरे जहन में नहीं भी हैं, उन सबको मिला के एक लफ्ज में वो सारी तारीफें जमा हो जाए, एक ही ऑप्शन रह जाती है आपके पास, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अंदाजा करो एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, एक छोटे से अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको किसी भी और तरह कहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। और ये बात यहां से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अपना सफर फातिहा के अंदर। अच्छा, इस सेशन में आपको मैं रब्बिल आलमीन के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। मैंने अभी हमने बात की थी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, और इस सूरत में और नाम भी आने वाले हैं, और रहमान लिल्लाह के बाद रब्बिल आलमीन पहला नाम है, उसके बाद अर रहमान, उसके बाद अर रहीम, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, और कुरान में और जगह अल गफूर, यू नो, अल शकूर, अल हलीम, अल अलीम, अल हकीम, कितने नाम है अल्लाह ताला के। और उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अपने नाम के बाद फातिहा में पहली अपनी तारीफ, पहली चीज जो हमें अल्लाह के बारे में जाननी चाहिए हम्द के बाद, वो क्या है, रब, रब, हर चीज से पहले रब। ये क्यों है, इसको समझने के लिए आप इस तरह समझें कि कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिनसे रिश्ता बनता है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे रिश्ता नहीं बनता, ठीक है। कुछ रिश्ते वाले नाम हैं और कुछ बगैर ताल्लुक, बगैर रिश्ते वाले नाम हैं। मैं बात समझाता हूं। अगर मैं कहूं उस्ताद, उस्ताद के लफ्ज से किसी से रिश्ता बनता है, किससे, शागिर्द से। अगर मैं कहूं मां, बच्चा। अगर मैं कहूं मालिक, जो गुलाम है, मालिक और गुलाम का रिश्ता बनता है। एम्प्लॉयर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। हाँ, आजिर, आजिर के साथ मुलाजिम का रिश्ता। कुछ अल्फाज हैं जिससे रिश्ता बनता है। अगर मैं कहूं हिकमत वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता। सबर वाला।
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Okay. एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में। इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना। कुरान ने कहा एक और मकाम पर, तबारक الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। अल्लाह ने कितना मुबारक है वो जिसने कुरान को नाजिल किया, फुरकान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो तमाम आलमीन के लिए खबरदार करने वाला बने। अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, पहाड़ों को खबरदारी की ज़रूरत है, आसमान को खबरदार करने की ज़रूरत है, खबरदारी की इंतज़ार की ज़रूरत किसे होती है? लोगों को होती है ना। अवलम ननहका अल आलमीन, एक रसूल से कहा गया कुरान में, हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया, यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, अपनी बात से बात रखें, अपने काम से काम रखें। वहाँ भी अल आलमीन का ज़िक्र किया कुरान में बार बार। अल आलमीन लुगत के एतबार से और कुरान के एतबार से आलमीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी अहमियत फातिहा में क्या है? फातिहा की में बात हो ही नहीं रही आसमान ज़मीन की और अल्लाह ताला की मखलूक की। असल में फातिहा का बुनियादी मकसद क्या है? एक रिश्ते को कायम करना है रब और अब्द के दरमियान। जो अगर आप कहें ना लुब लुबाब क्या है फातिहा का, वो ये है रब और अब्द का रिश्ता। तो उसका हर लफ्ज़ वापस या रब की तरफ जाएगा या अब्द की तरफ जाएगा। यहाँ असमावाती व अर्थ कहा होता तो अब्द की तरफ बात ना जाती, कहीं और चली जाती, लेकिन अल आलमीन किया है तो अल्लाह ताला के बंदों की तरफ वापस है ये बात। ये कुरान के अल्फाज का एक दकीक इस्तेमाल है। हर लफ्ज़ का एक मकसद होता है सूरत के अंदर। जब सूरत का मकसद समझ में आ जाए तो हर लफ्ज़ उस मकसद की तरफ आपको वापस ले जाता है और वो मकसद फिर खुद ही से वाज़ेह हो जाता है। अब आगे लफ्ज़ आ रहे हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के, अर्रहमान अर्रहीम। क्या तर्जुमा करें जी अर्रहमान अर्रहीम का? उर्दू में क्या तर्जुमा होता है जी, बताएं आप मुझे। जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, आम तर्जुमा यही है ना? ठीक है, पहले अरबी में समझ लेते हैं। रहमान और रहीम दोनों रहम से निकले हैं। अरबी के एतबार से रहमान और रहीम का जो असल है ना दोनों की, वो एक ही है। और वो क्या लफ्ज़ है? रहम। तो पहले रहम को समझ लें। रहम में दो मायने हैं। रब में कितने मायने थे? पांच। रहम में दो मायने हैं। एक है शदीद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो अपनी मोहब्बत के जवाब में कोई तवक्को ना रखती हो, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव, बेलॉस मोहब्बत। दूसरा मायना इसका है मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना, हर तरह से किसी का ख्याल रखा जाए तो आप उस पर रहम कर रहे हैं। रहमत का लफ्ज असल में अरबी में निकला है रहम से। रहम कहते हैं माँ के पेट को, और माँ के पेट से माँ का क्या ताल्लुक है? एक तो उसको से शदीद मोहब्बत है, और वो अजीब किस्म की मोहब्बत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेट में, उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, उसको उल्टी आ रही हैं, उसको कमर में दर्द हो रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा, उसको सांस नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही, ना नींद में चैन, ना बैठे होने में चैन, ना लेटे होने में चैन, ना खड़े होने में चैन, और उसकी तकलीफ़ की एक ही वजह है, माँ की सारी तकलीफ़ की एक ही वजह है, क्या है? बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा तकलीफ़ में इजाफा करता है, उल्टा माँ उससे कम मोहब्बत के बजाय क्या ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर आखिरी लम्हा आता है, बच्चा तकरीबन माँ को मार डालता है, तकरीबन मर, कितना खून उस माँ ने बहाया है, और ज़िंदगी में उसका इतना खून नहीं निकला होगा जितना इस बच्चे की वजह से निकला है। और निकलने के साथ ही बदला देने के बजाय कि तूने किया ये मेरे साथ, सारी दुनिया को भूल जाती है उसकी सारी मोहब्बत बच्चे की तरफ। और जब वो बच्चा उसके पेट में होता है तो उस बच्चे का मुकम्मल तौर पे ख्याल किया जा रहा होता है, किराया पे हुआ हुआ है, खाने का इंतज़ाम है, सफाई का इंतज़ाम, सारा इंतज़ाम किसने किया हुआ है, सब पूरी तरह से ख्याल रखा हुआ है। रहम से दो मायने निकलते हैं, शदीद मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल तौर पर ख्याल करना। अच्छा, अब रहमत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, भाई रहम करो, उस्ताद आपको फेल, टीचर आपको फेल करने वाला है मैट्रिक के इम्तहान में, सर जी रहम करें सर जी। रहम का क्या मतलब होता है? सजा ना दें। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दें, सर रहम करें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका दे दें। क्या मतलब है सजा ना दें? पुलिस वाले ने रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? शदीद मोहब्बत। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी ज़बान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नए मायने निकल आते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है, और रहमान रहीम रहम करने वाला, रहम की उर्दू जिसकी उर्दू ज़बान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूँ, मैं समझूँ बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, the military showed no mercy, the judge showed no mercy, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा, जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत है, इसका ताल्लुक मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से है, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर्रहमान और अर्रहीम। अब इन दोनों का आप हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर बात एक ही है तो दो दफ़ा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर्रहमान के बारे में। रहमान जैसे लफ्ज अरबी में और भी हैं, आतशान, गतबान, जवान, इसको कहते हैं फ़ालान, लफ्ज़ जो एक ही तरह के होते हैं ना, उनका एक वज़न होता है, इसको वज़न कहते हैं अरबी में, गतबान, आतशान, जवान, रहमान। इन अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रहमान जैसे अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत होती है इसमें शिद्दत होती है, तो रहमान बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला, और रहम अरबी वाला रहम, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ख्याल करने वाला, शदीद ख्याल करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, पहला मायना। दूसरा मायना इसका यह होता है कि ये फौरी होती है, अभी अभी, यानी यही नहीं कि वो बहुत शदीद मोहब्बत कर रहा है, बहुत शदीद ख्याल कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, ये नहीं कि करेगा, फिक्र ना करो अगले साल करेगा, फिक्र ना करो बहुत जल्द करेगा, नहीं अभी अभी कर रहा है, अलन फौर, अलहदूस इसको बनागा में कहते हैं, अलहदूस। लेकिन तीसरा मायना ज़रा पहले आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, तीसरा मायना है कि ये किसी वजह से आर्जी होता है, temporary ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا, عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرمننٹ نہیں ہے, دائمی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان, شدید بھوکا. کیا کسی وجہ سے جوع, بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان, شدید غصے والا. ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہے. اب کہہ رہے رحمان, شدید محبت کرنے والا, ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے, شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے, کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. میں رحمان تو وہ رہے گا, میرے لیے نہیں ہوگا, یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی, ایک طرح سے ایک خطرہ ہے, اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا, یہ تین باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا تین باتیں تھیں, مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت, فوری, عارضی. اوکے, رحیم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں, رحمان کے بارے میں تین, رحیم کے بارے میں دو. اوکے, وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت بہت علم والا شخص ہے, بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے, پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے, چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, وہ صفت ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے, وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ گرم ہو یا سرد ہو, وہ یا اندر ہو یا باہر ہو, لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا, وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل, جیسے رحیم, شریف, کریم, عزیز, سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں اپنے, آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں, بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں, ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, ممکن ہے کہ نہیں. یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں. اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے. لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں, اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھنے کہ گاڑی ہے, اس کا بہت بہت ہی طاقتور انجن ہے, لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو, صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو تین معنی نکلے رحمان کے اور دو معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں, اگر صرف الرحمان کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا, اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی, اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی, لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا वो तो रहमान के अंदर है ना। दोनों की जरूरत थी। अब शिद्दत भी आ गई, फौरी तौर पे भी हो गई और हमेशा के लिए भी हो गई। अर रहमान अर रहीम, एक और तरह से समझ लें, फर्ज करें कि आपको बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, आप घर पे पहुंचे, खाना तैयार है, वाइफ ने आपके लिए बहुत अच्छा आपका फेवरेट खाना बनाया हुआ है, स्मेल भी आपको आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन प्लेट खाली है टेबल के सामने, भूख आप भूखे मर रहे हैं, और वो आराम से आके आपके सामने बैठती हैं आपकी वाइफ और कहती हैं अगले हफ्ते क्या खाएंगे। अगर वो ऐसा जालमाना सवाल पूछती हैं, उस वक्त आपके जहन में अगला मिनट समझ नहीं आ रहा, अगले हफ्ते की क्या बात कर रही हो बेगम, अभी मुझे बस खाना खाना है। जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तो उसको कब की फिक्र होती है, बात की कि अभी की? अभी की फिक्र। आपकी जॉब है, यहां पर मंथली पेचक होता है या बाई वीकली होता है, क्या होता है? चलो पहली को पेमेंट नहीं है या तीस तारीख को पेमेंट नहीं है, ठीक है, फर्ज करें आपका बॉस जो है उसने आपको चेक देना है, 5 बजे आपको ऑफिस से जाना है, 4:50 हो गए हैं, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फोन उठा नहीं रहा, और आपको जाना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, किराया देना है, ये करना है, और आपको लोग तसल्ली दे रहे हैं, नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, बॉस साहब बहुत रिलायबल हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप बेफिक्र हो जाए, वो हमेशा ऐसे होते हैं, वो कभी भी लेट नहीं होते, आपको तसल्ली हो जाएगी? हाँ ठीक है, हमेशा तो होते हैं, काश के अभी भी हो रहे होते। जब मुसीबत होती है ना, जब मुसीबत होती है तो आपको हमेशा वाली चीज़ की से तसल्ली नहीं होती, आपको फौरी तौर पर तसल्ली चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने अर्रहमान का जिक्र पहले किया, क्यों? क्योंकि अर्रहमान में रहमत कब आती है? फौरी तौर पे, अभी आ रही है। अच्छा वो मिसाल दी थी आपको खाने वाली, भूखे बैठे थे, अब आपने खा लीजिए बिरयानी, पेट भर गया, फिर आप कहोगे हाँ बेगम वो अगले हफ्ते के बारे में क्या बात कर रही थी आप? अब कैसे दिमाग खुल गया? क्योंकि इंसान की नेचर में क्या है, जब अभी वाला मसला हल हो जाए तो दिमाग कहाँ जाता है? आगे के बारे में, यही होता है ना। अभी का मसला हल, अभी अगर अभी का मसला है तो आगे कुछ समझ नहीं आती, अगर अभी का मसला हल हो गया, एक दफ़ा इधर की तसल्ली हो गई, तो फिर आगे की। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियली मुश्किल में होते हैं वो आगे की नहीं सोच सकते, और जो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास बहुत जाते हैं, क्योंकि उनको एंग्जाइटी होती है किस चीज़ की? फ्यूचर की, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना है, छत है, सब कुछ है, तो अब यहाँ का तो मसला हल हो गया, आप आगे की सोचो। अल्लाह ताला ने क्या किया, अभी का मसला हल करने के लिए अर्रहमान दे दिया, हमेशा का मसला हल करने के लिए क्या दे दिया? क्या बात है, अर्रहमान अर्रहीम, उसकी तरतीब भी क्या अजीब तरतीब है, उसको आप इधर से उधर करो बात वो नहीं रहेगी, वो अपनी जगह उसका एक एक मकाम है। और फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अजीब तफसीर है इसका, इन दो अल्फाज की, कहते हैं अर्रहमान दुनिया के लिए और रहीम आखिरत के लिए, कहते अर्रहमान दुनिया में हर एक के लिए और अर्रहीम सिर्फ अहले ईमान के लिए आखिरत में। ये बात भी अब समझ में आ गई, क्यों? अर्रहमान में क्या था, हमेशा के लिए क्या आर्जी? दुनिया भी तो आर्जी है ना, पर इस आर्जी दुनिया में अल्लाह सिर्फ क्या मुसलमान को रिस्क देता है? सबको देता है, सिर्फ कुछ लोगों पर रहम करता है, सब पे करता है, लेकिन आखिरत में जो हमेशा की रहमत है वो किसके लिए है? अहले ईमान के लिए। और आखिरत का लफ्ज ऐसा होना चाहिए जिसमें हमेशगी हो, और वो क्या लफ्ज है? अर्रहीम। अजीब। आप नोटिस करेंगे कुरान में जन्नत से मुतालिक रहीम भी आता है, क्यामत के दिन से मुतालिक अर्रहमान भी आता है। क्यों? क़यामत का दिन हमेशा के लिए नहीं है, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے نہیں. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت, آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہ کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی, الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا, کس محبت سے سکھایا گیا تھا, کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا, ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بعد.
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
1: دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, ایک رب اور ایک مالک, اور ان دونوں کے درمیان دو الفاظ ہیں,